0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully?
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक

स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वंदन वार से पहले चिंतन। आज का चिंतन है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन उसूल है हमेशा मुस्कुराती रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान कई परेशानियों की सबसे अच्छी दवा है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 6:30 का समय हुआ है। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 210 आप सुनेंगे। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का भाग 5 प्रसारित होगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। ये कार्यक्रम आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सात बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत। हम हैं राही प्यार की ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। इसका भाग 31 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात पुनः 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे हेलो फरमाइश। ग्यारह बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। 12:05 पर सजाई जाएगी यादों की महफिल। सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे। 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। 3 बजे सुनिएगा हेलो सहेली। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे आपको सुनवाई जाएगी गीतों भरी कहानी। कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का है। 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर शाम को वक्त होता है कार्यक्रम संध्या रंजन का। 7:00 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गजलों से सजा गुलदस्ता। 8:00 आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी जरा सी आंख लग गई, लेखन और निर्देशन गिरिंद्र प्रसाद का है।

आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर राजुल अशोक का है। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और रात्रि 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा में। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 210।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: रविंद्र जी, तबले के दौर की बात हो रही है तो तीन ताल की हमने पिछले कड़ियों में बात की। हाँ। तीन ताल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से ताल है जिनका उपयोग किया गया है?
2: जी, तीन ताल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो ताल हम लोग संगत के लिए लेते हैं
1: जी,
2: उसमें भी एक है कि तीन ताल की जैसे खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये सात मात्रा का ताल है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं और ज़्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो जो है सात मात्रा का चक्र जो है
1: जी,
2: वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभाना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के
1: जी। और जहां तक मेरा ख्याल है ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है।
2: हाँ, खाली से होती है, ती पर खाली है, ती ती ना धी ना धी ना
1: जी।
2: तो वो खाली से शुरू होने वाला ये,
1: और ये निरालापन ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है।
2: बिल्कुल,
1: और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में,
2: हाँ हाँ,
1: तो बड़े सुनने को
2: बहुत ही अच्छे
1: होते हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं?
2: आपकी नजरों ने समझा।
1: क्या बात है, अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है लता जी के स्वर में, मदन मोहित साहब की संगीत रचना
2: जी।
1: आइए सुनते हैं।

0: तो ये जो है ये रूपक के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है। तो दीपचंदी की भी कई सारी रचनाएं हुई है, और इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा ले या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा ले,
1: ऐसा नहीं होता।
0: ऐसा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपना अपना उनका एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है। इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है।
1: मिसाल के तौर पे कौन सा गाना
0: दीपचंदी में? अजीर उठकर अब कहाँ जाइए,
1: आरजू फिल्म की बात आप कर रहे हैं।
0: जी जी
1: जी जी जी, बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देश पर आधारित है, और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं फिर आगे।

0: ताल में निबद्ध ये गीत हम सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से। रविंद्र जी, रूपक के बाद अब किस ताल की चर्चा करेंगे?
1: रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है। जैसे रूपक की 7 मात्रा है,
0: जी जी,
1: तो उसकी दुगनी 14 मात्रा, 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो ती ती ना धी ना धी ना ती, ये रूपक है। और दीपचंदी जो है वो

0: श्रोताओं, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरजू से, लता मंगेशकर का स्वर। ऐसा ही एक और गीत है रविंद्र जी,
1: जी
0: कश्मीर की कली फिल्म से।
1: हाँ।
0: ये भी ताल दीप चंदी में निबद्ध है।
1: हाँ।
0: इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
0: इसकी भी झलक सुनते चले।
1: बिल्कुल।

0: में ये थी झलक कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत की, जो ताल दीप चंदी में निबद्ध है और राग पहाड़ी पर आधारित है। संगीतकार ओपी नैयर। रविंद्र जी, रूपक 7 मात्रा का ताल है और दीप चंदी 14 मात्रा का।
1: हाँ।
0: फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग किसी गीत में कभी हुआ है?
1: बिल्कुल हुआ है, और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है, वो पिया तो से नैना लागे रे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है। एसडी बर्मन साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं। ये इसमें जो है ना वो है तालवाद्य कचेरी।
0: जी,
1: तालवाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तालवाद्य है और उन तालवाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस। तो तालवाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको ये फिल्म गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और जो एसडी बर्मन साहब ने किया है। तो पिया तो से नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो तालवाद्य कचेरी अंत में बजती है, लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है। तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मज़ा इसमें है, इस गाने में। मतलब जो उसका वजन एक बार रूपक का है एक बार दीपचंदी का है, दोनों बहुत ही अच्छा लगते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फिलर की तौर पर, मतलब इंटरलूड।
0: अच्छा।
1: जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से धगने धिन्न धनना, तो ये जो छोटा सा पीस है जिसको हम इंटरलूड कहते हैं, तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं। ये इस गाने में वो तबले पे बजा है इंटरलूड, और वो बहुत ही खूबसूरत है।

0: रूपक ताल और दीपचंदी ताल का साथ साथ प्रयोग जिस गीत में किया गया, गाइड फिल्म का वही गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज हमने आपको सुनवाई इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

0: यहाँ देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होंगे।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नरानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है मुकेश ने। भरत व्यास के बोल हैं, सतीश भाटिया का संगीत। फिल्म का नाम बूंद जो बन गई मोती।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूलिए बिसरे गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पतंगा से शमशाद बेगम का गाया गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, सी रामचंद्र का संगीत है।

अभी आपने शमशाद बेगम का गाया गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं तुलसीदास फिल्म से आशा भोसले और साथियों के स्वरों में जीएस नेपाली का लिखा गीत। धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

0: अभी आपने सुना आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, और आइए अब सुनते हैं ये संदेश, और संदेश के बाद लेते हैं एक अंतराल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, भूले बिसरे गीत में इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत। फिल्म का नाम है नास्तिक। प्रदीप ने इस गीत को लिखा है, सी रामचंद्र ने संगीत से सजाया है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मेला से। ये गीत शमशाद बेगम और मुकेश के युगल स्वर हैं। शकील बदायूनी का लिखा गीत, नौशाद अली का संगीत।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शर्त से ये गीत, जिसे लिखा है SH बिहारी ने। गायक कलाकार और संगीतकार हेमंत कुमार।

अब आपको सुनवा रहे हैं मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। रचना हसरत जयपुरी की है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ में कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम हम है राही प्यार की लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूँ पूजा नारानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से। आशा भोसले और अनवर की आवाजें, निदा फाजली के बोल, धुन बनाई है खयाम ने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की। चुपके चुपके इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम है राही प्यार की इस कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत हमारा संसार फिल्म से।

0: श्रोताओं, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं बस एक छोटी सी अंतराल के बाद।
1: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी,

0: सफेद नमक देना शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: तो ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: आपको सुनवा रहे थे हमारा संसार फिल्म का गीत महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: आपको सुनवा रहे थे हमारा संसार फिल्म का गीत महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

जिगरी दोस्त इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: काम मस्ताने का, इश्क है दीवाने का, और तीर होता है निशाने का। मेरी तू
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम नाइट इन लंदन।

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में प्यार की जायज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की यही संपन्न होता है।
1: एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के नागपुर केंद्र से हम बोल रहे हैं। 8 बजने को है, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया। कहा, अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने

0: अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता।

आओ सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो।

अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने

0: और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
0: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
2: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
2: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बैरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्ते भीड़ पर हमला कर दिया।
0: इस हमले के लिए फुल्लर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुल्लर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।

0: पुलिस के निर्दय लाठीचार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहूलुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठीचार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य।

0: कर्तव्य है।
1: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
2: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
1: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठीचार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।
3: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आइए अब सुने देश गान।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: वीडियो लाइक करण्यासाठी पैसे मिळतील सो इजी
2: फसला
3: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका। RBI सांगते
2: जाणकार बना सतर्क रहा।
4: आजकाल भारतातल्या गावोगावी गच्चींचं रूप बदलून गेलंय। जिथे आधी फक्त पापड आणि कपडे वाळत घातले जायचे तिथे आता वीज बिल शून्य होत आहे। गावोगावी लोक सोलर पॅनल बसवत आहेत। तुम्ही बसवून घ्या। भारत सरकार तब्बल

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA। यह दिवस PSMA की भी वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवैध मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है।

फिशिंग से महासागरों में जैव विविधता, समुद्री संसाधनों और उन मछुआरों की आजीविका को भी भारी खतरा होता है श्रोताओं, जो कि नियमों का पालन करते हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं समीर का लिखा गीत प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: QR कोड स्कॅन करा, 5000 चा कॅशबॅक मिळवा. वा, दिवस वसूल झाला.
1: फसला. UPI पिन एंटरिंग फक्त पैसे पाठवण्यासाठी.
2: RBI सांगते,
1: जाणकार बना, सतर्क रहा.
3: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है.
4: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं. साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है. आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है. पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान.
5: हेलो डॉक्टर, लाइव फोन इन प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे. आज का विषय है हृदय रोग. तज्ञ है डॉक्टर प्रमोद मुंधड़ा. अगर आपके मन में कुछ सवालात है तो आप हमें पूछ सकते हैं फोन.

0: द्वारा। हमारे फोन नंबर्स है 6940067-2560101 तथा 2529-2666। तो सुनना ना भूलिएगा। हेलो डॉक्टर, लाइव फोन इन प्रोग्राम सुबह 10 बजे,
1: नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं, आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल, सोना मोहपात्रा की आवाजें, कुमार का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर, सुनना नहीं भूलिएगा।

अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा मुझे यानी पूजा नारानिया को। नमस्कार।

जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा। 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

0: माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक अली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

फिर आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

नीरजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

इसके बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्म

के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है, उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: का जरूरत नहीं है, भविष्य में हो सकता है जरूरत लगे, लेकिन आज की जो आप रिपोर्ट बता रही हैं उसमें आपका काम कुछ साधारण मेडिसिन से हो जाएगा, आप अपने मन से डर निकाल दीजिए, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है।
1: डॉक्टर, एंजियोप्लास्टी किंवा एंजियोग्राफी झालेली?
0: मैडम, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के पहले एक एक्सरे के बारे में हम बात कर रहे थे, एक्सरे और प्रेगनेंसी।
1: हाँ।
0: तो एक्सरे के जो रेडिएशंस रहते हैं उससे प्रेगनेंसी में जो बेबी पेट में है, वूम में है, उसको यदि एक्सरेज का डोज नॉर्मल से ज्यादा मिल जाए हाँ। तो बेबी के डिफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट बराबर नहीं होना, किडनी डेवलपमेंट बराबर नहीं होना, बोन्स कमजोर रहना, इस प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों में आ सकती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस रहती है जिसमें प्रेगनेंसी रहते हुए भी एंजियो कार्डियक कैथ करना पेशेंट के लिए जरूरी हो जाता है, एक्सरे निकालना लाइफ सेविंग हो जाता है। तो इस सिचुएशन में प्रिकॉशंस लेके हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। तो उसके अंदर में क्या करते हैं, जो पेट रहता है, पेट का हिस्सा, उसको पूरा लेड शील्ड से कवर कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: लेड शील्ड से कवर करके उसको पूरा चारों तरफ से कवर कर दिया, तो जो एक्सरेज हैं उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, या पेनिट्रेट कर भी रहे हैं तो कम मात्रा में करेंगे,
1: दूसरा
0: इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो दो मोड होते हैं उसमें, एक फ्लूरोस्कोपी मोड होता है जिसमें रेडिएशन का डोज कम होता है, और एक सीने एंजियोग्राफी मोड होता है जिसमें रेडिएशन का डोज ज्यादा होता है। तो ये पेशेंट में फिर सीने एंजियोग्राफी नहीं करके फ्लूरोस्कोपी ही किया जाता है, और फ्लूरोस्कोपी की भी कोशिश करते हैं कि जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 3 से 4 मिनट से कम रहे। टोटल क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन जो है, यदि 3 से 4 मिनट से कम रहा, लो डोज फ्लूरोस्कोपी विदाउट सीने एंजियोग्राफी विद एब्डोमिनल शील्ड यदि हमने किया तो हम ये कर पाते हैं,
1: तो बैड इफेक्ट नहीं होगा,
0: बैड इफेक्ट नहीं होगा। तो एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें हार्ट के वॉल में चोकअप है, माइट्रल स्टेनोसिस। जो माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट हैं उनको प्रेगनेंसी में तो तकलीफ होती है, लेकिन डिलीवरी के समय वो हार्ट फेलियर में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और उनके लंग्स में पानी भर के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रेगनेंसी का 7वें महीने का जो समय रहता है, 6वें से 8वें महीने के बीच का जो समय है, उस समय ये वॉल को बलून से ओपन किया जाता है, और उसके लिए पेशेंट को कैथ लैब में लेना जरूरी है। तो विद प्रिकॉशन हम बलून माइट्रल वॉल्यूलोप्लास्टी प्रेगनेंसी के समय भी कर पाते हैं।
1: एक श्रोता है लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: हेलो,
0: हाँ बोलिए।
2: हाँ सर, मैं आप ही के पेशेंट हूँ। सर, मैं एक पूछना चाह रही थी कि एंजियोप्लास्टी के बाद मेरी बीपी उसके पहले बढ़ती थी, अभी की नहीं, अपने आप ही कम होते जा रही है, 130 के कभी कभी बिलो ही रहती है।
0: हाँ।
2: तो ये धूप के वजह से होता है, और कभी कभी क्या होता है, मैं रात में आर्बिटल करके आधी गोली ले लेती हूँ फिर कभी। और कितने होने से लेना चाहिए और कितने होने से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टाइड भी लेती हूँ, बाद में फिर प्रोलोमेट लेती हूँ, जो भी है मेरे सिक्वेंशियल दवाइयाँ मैं लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कभी कभी कम बीपी होने से दूसरे दिन मुझे थोड़ा लूज लगने लगता है। तो एक बार मैं बीपी नापती हूँ और बाद में थोड़ा सा डोज जो है 20 mg का आर्बिटेल उससे कम लेती हूँ, फिर रात को अगर ऐसा लगे कि 130 के ऊपर जा रहा है बीपी तो मैं वैसे करती हूँ फिर, क्योंकि दूसरे दिन फिर मुझे ज्यादा लेने से 20 mg लेने से थोड़ा लूज लगने लगता है।
0: मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे सब आपके जैसे एजुकेटेड पेशेंट मिले जो इतना डिलीजेंटली अपने मेडिसिन के डोज एडजस्ट कर रहे हैं,
1: चेक करके
0: दे रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप इतना अच्छे से खुद का केयर कर रही है। यदि मेरे पेशेंट, सब पेशेंट इस तरीके से अपने आप को ट्रीट करने लगे तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वे शी इज डूइंग इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। वो जो दीदी कर रही हैं, वो जो एग्जैक्टली हमें चाहिए वैसा कर रही हैं। तो जैसा वो उनके जो रेगुलर डोजेस हैं टाइड प्रोलोमेट के वो ले रही हैं, उसके बाद यदि बीपी 140 के ऊपर रहने लगे,
1: सुबह शाम चेक भी कर रही
0: है, सुबह शाम चेक भी कर रही है, तो जैसा उन्होंने टाइड प्रोलोमेट का रेगुलर डोज लिया, उसमें ब्लड प्रेशर देखते समय हमारे पास 2 ब्लड प्रेशर है, एक ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक। ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है वो हमें 100 से 140 चाहिए, नीचे वाला डायस्टोलिक जो है वो 60 से 90 चाहिए। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यदि 100 के नीचे है तो डोज स्किप करना है, 100 से 140 है तो नॉर्मल डोज लेना है, 140 से अधिक है तो एक्स्ट्रा डोज लेना है। ठीक है, वैसे ही नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 से 90 है तो यदि 60 से 90 है तो सेम डोज, 90 के ऊपर है तो डोज बढ़ाना है, 60 के नीचे है तो कम करना है। बहुत बार हम पब्लिक मैंने नॉर्मल पेशेंट जो ये दोनों चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, हम बोलते हैं कि भाई आप नीचे वाला ब्लड प्रेशर छोड़ दो, आप ऊपर वाले ब्लड प्रेशर पे ध्यान दो। यदि ऊपर वाला

0: ब्लड प्रेशर 100 से 140 है तो उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करो। यदि आप समझ सकते हैं कि नीचे वाले ब्लड प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है तो आप उसको मैनेज करो, नहीं तो आप नीचे वाला छोड़ दीजिए। नीचे वाला ब्लड प्रेशर यदि थोड़ा लोअर साइड में है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ऊपर साइड में है तो उसको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है।
1: ब्लड प्रेशर एग्जामिन कर लेना।
0: तो ब्लड प्रेशर यदि 100 के नीचे जा रहा है तो आपको नमक नींबू का पानी लेना है, कुछ ORS पाउडर जो रहता है वो लेना है पानी में डाल के, पानी एक्स्ट्रा लेना है, और सडन चेंज ऑफ पोजीशन, सो के बैठ के खड़े होते समय या सो के खड़े होते समय झटके से खड़े नहीं होना है कि चक्कर आके गिर जाए बेहोश हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो एक लो ब्लड प्रेशर होने पे और डोज स्किप करना है। 100 से 140 है तो सेम डोज लेनी है, और 140 के ऊपर यदि है तो जैसा वो कर रही है कि डोज एडजस्ट करती हैं, जैसा आर्बिटेल जो है उसमें टेलमिसार्टन नाम का मेडिसिन है, समझ के किया तो वो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर रही है।
1: एक श्रोता है लाइन पर। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, मला डॉक्टरांना विचारायचं होतं।
1: हो हो
0: बोलिए।
1: तुमच्या रेडिओ सेटचा आवाज थोडा कमी करा।
0: रेडिओ का आवाज कम करेंगी और फिर से पूछेंगी।
2: आज तो ऑपरेशन होने के बाद ते भुईमुगाच्या शेंगा वगैरे जे आपण खात असतो उकळलेल्या, आता सीजन वाईज येतात त्या, त्या काही प्रॉब्लेम करतात का? त्यांनी काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो का?
0: नाही, काही प्रॉब्लेम नाही, खाऊ शकतात।
2: हातचं ऑपरेशन झाल्यानंतर?
0: हो हो, काही प्रॉब्लेम नाही,
1: प्रमाणात।
2: ओके ओके, थँक्यू।
1: मी हे विचारत होते मगा की प्लास्टिक झालेली असेल एखाद्या महिलेची, नंतर प्रेग्नन्सी असेल तर तिने काय प्रिकॉशन घ्यायला हवी?
0: तर हे जे आता ज्वलंत प्रश्न आहे, कारण अगोदर ही परिस्थिती नव्हती, कारण अगोदर महिलांमध्ये हार्ट अटॅक जास्त वयामध्ये येत होते, 60-70, आणि आता आम्ही बघत आहे की कमी वयामध्ये पण हार्ट अटॅक येतात, आणि कमी वयात हार्ट अटॅक आलं आणि त्याच्यानंतर आता प्रेग्नन्सी ठेवायची आहे तर त्रास। तर एक आहे की आपले जे हार्टची जे मेडिसिन असतात ते आपल्याला आम्हाला ऍडजस्ट करावं लागते, कारण हार्टची जे मेडिसिन आहे त्याच्यामध्ये एक स्टॅटिन ग्रुपच्या मेडिसिन आहे। स्टॅटिन ग्रुपच्या मेडिसिन प्रेग्नन्सीच्या वेळी आपण दिलं तर बेबीच्या डेव्हलपमेंट बरोबर होत नाही। त्याचप्रमाणे जे मॅडम आता सांगत होत्या आर्बिटेल, आर्बिटेल किंवा त्यासारखी जे मेडिसिन असतात, टेलमिसार्टन, एसी इनहिबिटर ग्रुपच्या ड्रग, एआरबी ग्रुपच्या ड्रग, याच्यामुळे बेबीच्या डेव्हलपमेंट बरोबर होत नाही। प्रेग्नन्सीच्या वेळी आम्ही मेडिसिन कमीत कमी प्रमाणात देतो, आणि कमीत कमी प्रमाणात करून जे हार्टसाठी सेफ मेडिसिन आहे, बेबीसाठी सेफ मेडिसिन आहे, त्याच्याप्रमाणे मेडिसिन देतो, पण आम्हाला बॅलन्स करावं लागते आई आणि बाळ। कारण आपण मेडिसिन खूप कमी केलं तर आईला त्रास होईल, मेडिसिन जास्त दिलं तर बाळाला त्रास होईल। तर मेडिसिन ऍडजस्ट करून या प्रकारचे मेडिसिन ज्यांनी बाळाला त्रास होत नाही आणि आईसाठी जे गरजेचे मेडिसिन आहेत ते आम्ही देतो। दुसरं, प्रेग्नन्सीच्या वेळी जे मॉनिटरिंग लागते या पेशंटसाठी, पोस्ट एंजियोप्लास्टी आहे, पोस्ट हार्ट अटॅक आहे, तर हार्टची पंपिंग कशी आहे ते महत्वाचं आहे। हार्टची पंपिंग नॉर्मल आहे तर ती लेडी प्रेग्नन्सी ठेवू शकते, पण हार्टचे पंपिंग 20% 25% वर आलेली आहे अटॅकमुळे, त्याच्यासाठी एंजियोप्लास्टी झालेली आहे आणि त्याच्यानंतर आपण या लेडीला प्रेग्नन्सी राहिली तर आईला त्रास होईल। म्हणून हार्टची पंपिंग 50 कमी असेल तर त्यांना आम्ही सांगतो की प्रेग्नन्सी ठेवायची नाही, आणि अल्टरनेटिव्ह जे रूट्स आहे अडॉप्टेशन, अडॉप्शन किंवा या प्रकारच्या याच्यामध्ये जायची जायच्या सल्ला आम्ही देतो।
1: एक श्रोता आहे लाईनवर। हॅलो,
3: नमस्कार मॅम। नमस्कार सर, मैं राजीव सिंह सिविल लाइन से बात कर रहा हूँ।
0: बोलिए राजीव जी।
3: लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का किस सीमा के बाद सर हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद मतलब मेडिकेशन पे आना ही है, ये इंडिकेशन?
0: ठीक है, लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सबको करना है, इरिस्पेक्टिव आपका लिपिड प्रोफाइल कुछ भी है। नॉर्मल है तो भी करना है कि वो बढ़े नहीं, बढ़ा हुआ है तो भी करना है कि उसको कम करना है। अब आप मुझे बताइए कि आपका LDL कितना है और ट्राइग्लिसराइड कितना है?
3: ट्राइग्लिसराइड
0: 225 और LDL कितना है?
3: वो सर मार्कर से नीचे है, वो मुझे
0: कितना है वैल्यू? सपोज मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, 110-120 के रेंज में था, 60-90 के रेंज में था, 60 से 90 के बीच में। यदि आपका LDL 60 से 90 के बीच में है तो आपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं कि अति नहीं करना है कि बहुत ज्यादा तेल घी मक्खन मलाई खा रहे हैं कि ये बढ़े, वो मौका नहीं देना है। आपका ट्राइग्लिसराइड 225 है, ट्राइग्लिसराइड ये

0: जो था ब्लड सैंपल भूखे पेट था या कुछ खाने के बाद का था?
1: भूखे पेट।
0: भूखे पेट, यदि भूखे पेट 225 है तो आपको तेल, घी, मक्खन, मलाई कम करना चाहिए, खासकर मक्खन, मलाई, घी, जिससे ये ट्राइग्लिसराइड कम आए, और ट्राइग्लिसराइड और साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए। करीब 6 हफ्ते के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट रिपीट करना। यदि कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में फिर भी ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है तो हमें कुछ दवा चालू करने की जरूरत पड़ सकती है। यदि हम टारगेट देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट होता है एलडीएल। एलडीएल 100 के नीचे होना चाहिए। यदि एलडीएल 100 के नीचे है तो मोटा मोटी हम दवाई चालू नहीं करते। ट्राइग्लिसराइड जो नॉर्मल 150 के नीचे होना चाहिए, लेकिन ट्राइग्लिसराइड हार्ट के लिए उतना डेंजरस नहीं होता, इसके लिए 250 300 तक भी रहा तो हम दवा चालू नहीं करते, लेकिन यदि 300 के ऊपर जाने लगे तो फिर उसके लिए दवा चालू करते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो रहता है वो डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस को बहुत सेंसिटिव होता है। यदि पेशेंट ने थोड़ा भी ध्यान दिया तो ट्राइग्लिसराइड एकदम कम आ जाता है, तो इन्होंने ध्यान देना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड यदि 500 के ऊपर बढ़ा है तो वो हार्ट के साथ में पेनक्रियास के लिए भी डेंजरस होता है। पेट में एक पेनक्रियास की ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि में ट्राइग्लिसराइड यदि बढ़ा हुआ है तो ये ग्रंथि में सूजन आके पेनक्रियाटाइटिस होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो यदि 450 के ऊपर ट्राइग्लिसराइड है तो फिर इनको मेडिसिन लेने की जरूरत होती है। पहले ट्राइग्लिसराइड के लिए बहुत अच्छे इफेक्टिव मेडिसिन नहीं होते थे और जो थे उनके साइड इफेक्ट ज्यादा थे, लेकिन अभी बहुत सारे नए मेडिसिन आ गए हैं जिससे ट्राइग्लिसराइड को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एलडीएल हमारा प्राइमरी टारगेट है, ट्राइग्लिसराइड सेकेंडरी टारगेट है।
2: एक श्रोता है लाइन पर। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मैं अमरजीत सिंह बरौन नागपुर लश्करी बाग से।
0: बोलिए अमरजीत जी।
3: सर ये सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो रोबोटिक सर्जरी जो है मतलब ये कितना हेल्पफुल है, मतलब हार्ट पेशेंट में, मतलब क्या एक कॉमन मैन इसको अफोर्ड कर सकता है? और सर एक छोटी सी बात यह है कि कोरोना टाइम में हमने बहुत बार पढ़े सुने थे कि ये जो लहसुन जो होता है, गार्लिक जो हर मतलब किचन में अवेलेबल है, तो क्या अगर सर खाली पेट इसको एक दो मतलब रोज डेली खाए तो क्या इससे हार्ट की क्लेंजिंग होती है या नहीं? मतलब थैंक यू सर।
0: ठीक अमरजीत जी, आपके दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। रोबोटिक सर्जरी एक न्यू डेवलपिंग फेज है जिसमें रोबोटिक आर्म यूज करके सर्जरी की जाती है। तो रोबोटिक आर्म यूज करने से जो प्रिसीजन रहती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग का जरूरत होता है। जैसा हाथ से वर्क करने की ट्रेनिंग हमने ले ली, लेकिन हमारा हाथ कंप्यूटर पे है और हमारी जगह दूसरा कोई हाथ वहां पे अंदर काम कर रहा है और हमारे हिसाब से हिल रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत होता है जिसमें डमी मॉडल्स जो होते हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग ली जाती है। एक एडिक्वेट लेवल की ट्रेनिंग के बाद में रोबोटिक सर्जरी का प्रिसीजन नॉर्मल सर्जरी से बेहतर होना चाहिए, ऐसा मैं प्रिज्यूम करता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना लिटरेचर मैंने पढ़ा है उसमें दो चीजें हैं कि ये इंटरनल मेमोरी आर्टरी के डाइसेक्शन के लिए हेल्पफुल है। तो जब इंटरनल आर्टरी मेमोरी को हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसको निकालने के लिए उस डेप्थ तक जाके नॉर्मली हम नहीं देख पाते हैं, तो रोबोटिक आर्म से जो वहां पे कैमरे लगे होते हैं वो कैमरे से वहां पे अंदर तक माइक्रो कैमरे से हम अंदर तक देख सकते हैं और उससे एडिशनल बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये जो है एक इंटेंसिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इसके लिए है, तो जो लोग ट्रेंड लोग हैं उनके हाथ में रोबोटिक प्रोसीजर का एडिशनल बेनिफिट है।
2: एक कॉल लेते हैं सर। हेलो हेलो,
4: हाँ हेलो मैडम, मला करंसी बोलायचं आहे। मी इंदू मेश्राम बोलते जवाहरनगर वरून।
0: बोलिए।
4: हां सर, थोडासा हार्टचा प्रॉब्लेम असला तर सूप वगैरे खाता येत नाही का सर?
0: सूप खा सकते हैं, उसमें मक्खन बटर नहीं डालने का, सूप लेने का, लेकिन सूप में जो अपन
4: सूप नहीं देसी घी
0: खा। देखिए जितनी चीजें खाने पीने के लिए बनी है वो सारी चीजें अपने शरीर के लिए अच्छी हैं, प्रोवाइडेड हमने उसको लिमिट में लिया। अभी यदि आप बोलेंगे कि तूप ले रहे हैं तो मैं रोज 100 ml तूप लूं, नहीं। लेकिन यदि आप तूप ले रहे हैं, 10 ml तूप रोज लेते हैं, 10 ml घी रोज लेते हैं, तो वो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: दाल में
0: थोड़ा सा डाल लें, थोड़ा रोटी के साथ यूज कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा घी यदि यूज करेंगे तो उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, उससे हार्ट में और पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिमिटेड मात्रा में घी अच्छा है, और इसके अंदर में जो वेजिटेबल घी होता है वो यूज नहीं करना चाहिए। वेजिटेबल घी में सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं, तो जो नॉर्मल गाय का घी है या भैंस का घी है जो घर में बनाते हैं वो घी वापरना चाहिए, वनस्पति घी नहीं वापरना चाहिए
2: जी।
0: मैं मेरे सब

0: को हमेशा बोलता हूं और मैं खुद भी फॉलो करता हूं कि जीभ और हार्ट ये दोनों के बीच में आप सामंजस्य रखिए। जीभ के लिए हार्ट को परेशान ना कीजिए और हार्ट के लिए जीभ को परेशान ना कीजिए। आपने हार्ट का बहुत ध्यान रखा, एकदम रूखा सूखा खाना चालू किया, तेल घी जीरो कर दिया, बिल्कुल जीरो जीरो जीरो, मजा नहीं आया, जिंदगी का मजा खत्म हो गया। जब तक हम अच्छा खा रहे पी रहे नहीं है तब तक जिंदगी का मजा क्या है?
1: तो
0: हार्ट के लिए जीभ को परेशान मत करो, लेकिन जीभ के लिए हार्ट को परेशान मत करो। खाने बैठे पांच समोसे खा रहे हैं, पांच समोसे खाए, दो कचौरी खाई, साथ में फिर चार रसगुल्ले और दो आइसक्रीम खाई, तो इतना हार्ट के ऊपर भी अत्याचार मत करो।
1: खाओ
0: लिमिट में, लिमिट में। तो एक पोर्शन साइज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोर्शन साइज ध्यान रखते हुए आप वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो आप, जो आप आपकी आदत है, जो आप पसंद करते हैं वो लीजिए, लेकिन उसके पोर्शन साइज की तरफ ध्यान रखिए और उसका कुकिंग कैसा किया जा रहा है इसका ध्यान रखिए। यदि एक हम मंथ का एलोकेशन देखेंगे तो पर पर्सन पर मंथ एक 900 से 1000 ml तेल घी मक्खन मलाई मिला के यदि हमने लिया तो ये हमारी जीभ को भी ठीक ठाक रखेगा और हार्ट को भी ठीक ठाक रखेगा।
1: डॉक्टर, समय हो चला है, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज जो श्रोता है तो उनको आप कुछ बताना चाहेंगे?
0: प्रेगनेंसी के समय यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको रेस्ट नॉर्मल से ज़्यादा लेना है, डॉक्टर के सुपरविजन में ट्रीटमेंट लेनी है और डिलीवरी जो है वो ऐसे हॉस्पिटल में करना है जहाँ पे हार्ट और गायनिक दोनों फैसिलिटी अवेलेबल हैं। ऐसे हॉस्पिटल में
1: जिन्हें
0: प्रॉब्लम है उन्होंने ऐसा प्लान करना चाहिए, वो विशेष
1: सारी सुविधाएं वहाँ पर,
0: सारी सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए कि जहाँ पे सुविधा है वहाँ पे यदि ऑपरेट किया तो इवन हार्ट डिजीज के साथ प्रेगनेंसी को हम सेफली मैनेज कर सकते हैं। जिन महिलाओं को हार्ट कमजोर है, हार्ट की पंपिंग 40% से कम है या हार्ट में ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, आइजनमेंगर सिंड्रोम या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो या कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिजीज यदि है तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए। वॉल में चोकअप यदि है तो प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। यदि हार्ट की वॉल में लीकेज है, हार्ट में छिद्र है लेकिन हार्ट के अंदर का प्रेशर नॉर्मल है और हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है तो ये महिलाएं प्रेगनेंसी अच्छे से टॉलरेट कर सकती हैं।
1: थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह लेके, प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर प्रस्तुत हेलो डॉक्टर हा लाइव फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकत होता। विषय होता हृदय रोगा अंतर्गत प्रेग्नन्सी आणि हार्ट डिसीज। तज्ज्ञ होते डॉक्टर प्रमोद मुंधडा। या कार्यक्रमासाठी तांत्रिक सहाय्य लाभलं नंदकिशोर पोकळे आणि सतीश कोलमडवार यांचं, निर्मिती सहाय्य अतुल साखरकर यांचं। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते सचिन लाडोळे। आता मी शीतल डॉक्टर प्रमोद मुंधडा यांच्यासह या कार्यक्रमातून तुमची रजा घेते। नमस्कार।

0: मिश्र संगीत के प्रोग्राम में अगला गीत सुनने से पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
2: तो ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आजकाल भारतातल्या गावोगावी गच्चींचं रूप बदलून गेलंय। जिथे आधी फक्त पापड आणि कपडे वाळत घातले जायचे, तिथे आता वीज बिल शून्य होत आहे। गावोगावी लोक सोलर पॅनल बसवत आहेत, तुम्ही बसवून घ्या। भारत सरकार तब्बल 78,000 सबसिडी देते। 30 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी तर आधीच याचा फायदा घेतलाय।
2: पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा pmsuryaghar.gov.in वर।
3: हर घर सूर्यघर।
4: मिश्र संगीत के प्रोग्राम में आइए अब सुनते हैं असलम को।

0: श्रोताओं नमस्कार, आशा है आप सभी स्वस्थ कुशल है। आज फिर एक बार हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी शीतल लेकर चुनिंदा हिंदी फिल्मी नगमे। और कार्यक्रम आप जानते ही हैं, जी हाँ, वक्त है मधुमालती कार्यक्रम का। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं हमेशा की तरह देशगान, क्योंकि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए।
1: दाना दीन, दाना दीन।

वीर सावरकर इस फिल्म से ये गीत था। दिव्या कुमार तथा विजय प्रकाश की आवाजें थी, अनु मलिक का संगीत। श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण तथा पेड़ पौधों का जतन, इस हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए आज का दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस प्रकृति के रचयिता को प्रणाम करते हुए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है बूंद जो बन गए मोती। आवाज है मुकेश की, भरत व्यास की रचना, सतीश भाटिया का संगीत।

पर्यावरण दिन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है, यह दायित्व याद कराना। ये मिट्टी तो बस हमें देना जानती है, फल फूल छांव जल न जाने कितने रूप में ये देती जाती है। हमें भी हमारा कर्तव्य याद रख के इस पर्यावरण का संवर्धन संरक्षण करना चाहिए।

0: मधुमालती प्रोग्राम में लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: QR कोड स्कैन करा, 5,000 का कैशबैक मिलवा, वाह दिवस वसूल झाला।
2: फसला UPI पिन एंटरिंग फक्त पैसे पाठवण्यासाठी।
3: RBI सांगते,
2: जाणकार बना, सतर्क रहा।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: श्रोताओं, क्या आप अपने पसंद के नए हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं? तो आप हमें जरूर फोन करिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। कार्यक्रम आप जानते ही हैं, हेलो मेरी पसंद। फोन करने के लिए हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए, 6940067256001 तथा 2529266। तो फोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से।

आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण दिन के अनुसार। आइए सुनते हैं ये अगला गीत। ब्रेक से पहले आपने केसरी फिल्म का गीत सुना, अब सुनते हैं गीत गाता चल इस फिल्म से जसपाल सिंह को। शब्द तथा संगीत है रविंद्र जैन का।

पर्यावरण की बात करें तो बढ़ते प्रदूषण को रोकना समय की मांग है। अभी अगर हम नहीं संभलते तो आने वाला कल इस पृथ्वी के साथ साथ सारी जीव सृष्टि का नाश कर देगा। तो प्रदूषण से पर्यावरण को साथ में खुद को भी बचाएं, ताकि हमारे साथ साथ पशु पक्षी भी खुल के सांस ले सकें।

0: मधुमालती प्रोग्राम में फिर एक बार छोटा सा अंतराल।
1: QR कोड स्कैन करा, 5,000 सा कैशबैक मिलवा, वाह दिवस वसूल झाला।
2: फसला UPI पिन एंटरिंग फक्त पैसे पाठवण्यासाठी।
3: RBI सांगते,
2: जाणकार बना, सतर्क रहा।
4: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
5: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।
0: श्रोताओं कृपया ध्यान दें, अगर आप अपने पसंद के नए हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज फ़ोन कर सकते हैं 12:00 से 12:45 के दरमियान। कार्यक्रम है हेलो मेरी पसंद। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 6940067 2560101 तथा 2529266। तो फ़ोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12:00 से 12:45 के दरमियान। फिर एक बार स्वागत है मधुमालती प्रोग्राम में, आइए सुनते हैं अगला गीत।

पानी बचाए, बिजली बचाए, कचरे का योग्य व्यवस्थापन करे, प्लास्टिक पन्नियों का उपयोग ना करे, ऐसी छोटी छोटी सावधानियां अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर बरते तो अपने आप हमारा देश और देश का पर्यावरण सुजलाम सुफलाम बनेगा। बहती नदियां और हरे वृक्ष से लदे पर्वतों को बरकरार रखने में हम भी अपना योगदान दें।

श्रोताओं आपको एक बार याद दिला दें, अगर आप अपने पसंद के नए हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज फोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। कार्यक्रम है हेलो मेरी पसंद। हमारे फोन नंबर्स है 6940067256001 तथा 2529266। तो फोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। आज की मधुमालती आप सुन रहे हैं पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में।

कवि कबीर कहते हैं, वृक्ष कबहू नहीं फल भख है, नदी न संचय नीर, यानी वृक्ष अपने फल नहीं खाता, न नदियां खुद अपना पानी पीती। ये सब हमारे लिए है, बस हमें दूषित पानी से हमारी नदियों को बचाना है और वृक्ष कटने से बचने हैं, ये हमारा दायित्व।

श्रोताओं कृपया ध्यान दें, अगर आप अपने पसंद के नए हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज फोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। कार्यक्रम आप जानते हैं हेलो मेरी पसंद। फोन नंबर है 6940067-2560101 तथा 2529266। तो हमें फोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। प्रकृति की सुंदरता हमारे लिए ईश्वरी देन है। प्रकृति ये पर्यावरण हमें मन शांति, ऊर्जा तथा मन का सुकून देती है। ये हरियाली हमें तनाव मुक्त करती है, प्यासे को पानी देकर तृप्त करती है, समस्त सृष्टि को जीवन देने वाला सूरज, रात के अंधेरे में मन को आनंद देने वाला चांद, ये सब प्रकृति की देन है। चलिए हम भी प्रण लेते हैं पर्यावरण संवर्धन का, धरती माँ की रक्षा, जीवन की सुरक्षा।

0: 咁。भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने

0: पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल उद्यानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ।
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंडीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत,

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था।

0: कि निकले एक झलक में देख लूं,
1: क्या
0: जैसे
1: बात है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों से दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंख छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहला कर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतर कर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी। नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से, उसके दिल में अजब सा संसार था। एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में,

पहाड़ियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी, वो थी पहाड़ों वाली लड़की जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाएं कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज।

तो भाई ये गाना आपने सुना फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और ज्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। जहां दिन भर महुआ पर झूले, रात को चुपड़ते हैं फूल। जहां दिन भर महुआ पर झूल, रात को चुपड़ते हैं फूल। बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने

लिखी काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना नदी चंचलता नीले नंबर अंबर चांद जवाए हमको तरसाए बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं। तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। जरा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं, अगर तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्चि में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थी और फिजाएं थी, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

0: ये फिजाए बुला रही है तुम्हें।
1: आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूट कर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2 दूनी 4 बताइए किसकी है?

दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गुलजार गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर जब पैरों में

0: पॉलीथिन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा, तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना।
1: ये रातें ये मौसम।

किनारा। दिल्ली का ठग फिल्म का गाना आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ें, SH बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी। आज की इबारत से समझ में आ रहा है भाई, अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त को

0: कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं। बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।
1: मेरो आते रहे

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नजारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गाँव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में हंसर जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सब के सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

सामने बैठ कर ये अदाएं हर दिल कहे, दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी राजा मेहदी अली खां के।

बोलते और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण।

सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

0: बाजे।
1: अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
0: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
2: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्रपाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
2: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बैरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्ते भीड़ पर हमला कर दिया।
0: इस हमले के लिए फुलर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक

मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुलर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।

0: निर्दय लाठी चार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहू लुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठी चार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
2: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
0: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठी चार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6

0: प्रतिशत कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम।

0: से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
2: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलार ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
3: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकली है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगा हॉकी

0: स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो।
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: तो, हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा गाना है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, ITI कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छुपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो उनकी याद में एक गाना सुनेंगे उनकी आवाज में। तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी इंदौर से बोल रही हैं, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में कम निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं मैम हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की मेरी, बेटा है, अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है, और शाम की टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर से बहू आ गई तो टेंशन फ्री है थोड़ा।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवार हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना ही जरूरी है ना, घर में तो सब मैंने सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह से मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भोले विश्री संगीत सविता, भोले विश्री गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: हाँ, और दूसरा और सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना। घर में मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मेरे पेड़ करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुनूंगी गागो साइड का, नाचो तो बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी,
1: पूर्णिमा सैगम। अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है। जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस, बिल्कुल म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
0: जी एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउस वाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउस वाइफ है। क्योंकि हाउस वाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है।
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके।
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके पर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए।
0: बिल्कुल।
1: जो है
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे है, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया। तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से।
1: जी जी जी
0: जी। तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए, वो चिड़िया पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दो दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत जी, अच्छी जी, बात जी। है ये।
1: और
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
1: तो बिल्कुल आती हैं, सब खेलती हैं।
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये, आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जागवर से मिलने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?

0: मैं हाउस वाइफ हूँ।
1: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
0: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
1: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी हैं कि छोटी हैं?
0: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
1: अरे वाह,
0: बीएससी नर्सिंग की।
1: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है, जिससे कि वो सबकी सेवा

0: जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के पर सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाए गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करे। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: 2000 साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर। शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकी अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता। सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मिली। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी।

भावना, ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो, तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ, मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ ही लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया

भी नहीं आई, कहा रात में सुनूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा, और माँ से नहीं मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा।

संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना, माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे, माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा। भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो, तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहे और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है।

संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं।

माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई हैं। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है, शायद यही तो प्यार है। जब किसी एक इंसान में पूरी दुनिया दिखाई देने लगे और मुझे मेरी पूरी दुनिया तुम में नजर आने लगी है।

हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है।

अब राहें अलग नहीं रही, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे। खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छाव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा, समय चाहे जैसा भी हो। साथ निभाने का ये वादा अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए।

अब और कितना रूठोगे तुम? देखो मैं हार गई हूँ। अपने सारे गिले, अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रखती है। चलो अब मान भी जाओ, तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें, जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

मोहब्बत में इस कदर खो गए हम कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह। फिल्म का नाम है वारिस। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर और बप्पी लहिड़ी की, फिल्म का नाम है आपकी खातिर। इस गीत को लिखा है शैली शैलेंद्र ने और धुन बनाई है बप्पी लहिड़ी ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: राहुल देव बर्मन की संगीत निर्देशन में हम आपको अनजान का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अभिजीत के हैं। फिल्म का नाम है आनंद और आनंद।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और अभिजीत की। फिल्म का नाम था आनंद और आनंद। कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए लिया है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ गीत है ये। आवाजें हैं सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की। फिल्म का नाम है पति पत्नी और तवायफ।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम आंगन की कली। गीतकार हैं शैली शैलेंद्र और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की

0: सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
3: आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात जागतिक पर्यावरण दिन विविध उपक्रमांनी साजरा। व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय। आर्थिक वृद्धी दर घटण्याचा अंदाज। विधान परिषद निवडणुकीत माघार घेणारे काँग्रेसचे उमेदवार साहेबराव कांबळे आणि शैलेश अग्रवाल यांची पक्षातून हकालपट्टी। शासन जमिनीसंदर्भातील शर्तभंग प्रकरणांचा निपटारा आता जिल्हाधिकारी स्तरावर होणार। आणि 9 जून पर्यंत संपूर्ण विदर्भात विजांच्या कडकडाटासह वादळाची शक्यता। आता सविस्तर बातम्या। जागतिक पर्यावरण दिन आज साजरा केला जातो आहे। पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती करणं आणि हवामान बदल, प्रदूषण, जंगलतोड तसंच जागतिक तापमान यासारख्या गंभीर समस्यांकडे लोकांचं लक्ष वेधणं हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे। हवामानासाठी आणि आपल्या भविष्यासाठी निसर्गाकडून प्रेरणा अशी यंदाच्या दिनाची संकल्पना आहे। ऐकूया याविषयी विशेष रिपोर्ट आमच्या प्रतिनिधीकडून।
4: पर्यावरण दिनानिमित्त केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या। निसर्गापासून प्रेरणा घेऊन हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी आणि भविष्यासाठी काम करण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं। शहरातील पर्यावरण संवर्धनाला चालना देण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेतर्फे लोकसहभागातून येत्या वर्षभरात 5 लाख रोपट्यांचं वृक्षारोपण करण्यात

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा स्नेहिल अभिवादन। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है शहीद। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी खान मस्तान और साथी विराजा मेहदी अली खान की रचना है और गुलाम हैदर का संगीत।

यह आवाज थी किशोर कुमार की और फिल्म का नाम था अनोखी अदा। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्री

0: लॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकेश की आवाज में हम आपको फिल्म मंचली का गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना। गीत को लिखा है असद भोपाली ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। ये फिल्म है ये गुलिस्ता हमारा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अभिमान। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है दाग, गीतकार साहिर लुधियानवी है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: जयमाला कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत भारतीय सेना, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सुनेंगे गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद गजलें। तो पहले समाज फरमाइए बेगम अख्तर की आवाज में हामिद लखनवी का ये कलाम।

बेगम अख्तर की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी, और आइए अब सुनते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा का ये कलाम।

0: गुलदस्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें, और अब इंद्रधनुष कार्यक्रम खत्म होता है।
1: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
2: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।
3: श्रोताओं, हवा महल में आइए, आज आपको सुनवाते हैं झलकी, जरा सी आंख लग गई। लेखक और निर्देशक गिरीन्द्र प्रसाद।

0: दुनिया में समस्याओं का क्या कहना, एक से बढ़कर एक होती हैं। फिर समस्याएं देश विदेश की अलग होती हैं, गांव और शहर की अलग होती हैं, परिवार की अलग होती हैं, व्यक्ति व्यक्ति की अलग होती हैं, यहां तक कि पति पत्नी की समस्याएं भी कुछ अलग ही होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं की कुछ वानगी आपको पेश करता हूं। जी हाँ, इनसे मिलिए। आप एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से परेशान हैं और बेचारे किस्मत को कोस रहे हैं।
1: हे भगवान, लगता है आज फिर सब्जी जल रही है। अभी अभी तो रसोई में थी, कहाँ चली गई? अब मैंने कहा अरे भगवान कहाँ चली गई, देखो सब्जी जलकर खाक हो गई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ सोई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, इस महंगाई में रोज कुछ न कुछ जला कर बर्बाद कर देती है। कभी सब्जी जल रही है तो कभी दाल, बा जाए ऐसी पत्नी से।
2: क्या हो गया? क्यों जी, घर को मछली बाजार बना दिया है
1: क्या? और सुनो, मैं ही घर को मछली बाजार बना रहा हूँ। अरे देवी जी, तुम्हारी सब्जी जलकर खाक हो गई, कहाँ चली गई थी?
2: मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं कहीं चली जाऊँ, दिन रात घर में कोल्हू की बैल की तरह चलती रहती।
1: हाँ हाँ, तुम ही तो एक अजूबा की पत्नी हो जो घर का काम करती हो, मैं ही बैठे बैठे मस्ती मारा करता हूँ।
2: पर जनाब, अभी आप तो घर में ही थे, फिर सब्जी जल कैसे गई?
1: चूल्हे पर चढ़ी थी इसलिए जल गई, और कैसे जलेगी?
2: अगर आप चीखने और चिल्लाने के बजाय जरा सब्जी ही उतार लेते तो आपकी शान नहीं बिगड़ जाती।
1: लो और सुनो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है, अपने तो

0: पलंग पर लेटी थी और मैं बाथरूम से निकलकर रसोई में आकर सब्जी उतार लेता। क्यों?
1: आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं पलंग पर सोई रहती हूँ और घर का सारा काम आप ही तो कर देते हैं। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है।
0: अरे किस्मत तो मेरी फूटी है श्रीमती जी कि आज फिर मुझे जली सब्जी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान,
1: क्या करूं जी, अब और सब्जी तो घर में है नहीं जो फिर से बना दूं। आपने खुद ही सब्जी जलाई है तो मैं क्या करूं?
0: हाँ, और सुनो, मैंने ही सब्जी जला दी, पर ये क्यों नहीं कहती कि मैं सो गई थी?
1: हाँ हाँ, मैं तो सोई ही रहती हूँ, हमेशा आप यही कहते हैं। अरे वो तो निगोरी जरा सी आंख लग गई थी।
2: देख लिया आपने, पत्नी बेचारी नींद से ही परेशान है, जब तब इनकी आंखें लग जाती हैं। आखिर बेचारी करे भी तो क्या, अपनी आदत से लाचार जो हैं, बेचारे पति को तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए साहब, ये तो इनकी अपनी समस्या थी, पर ये तो सज्जन ट्रेन में बैठे हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जरा सा मौका मिला कि खर्राटे नेले लग जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है इन्हें। भाई साहब, जब आप सफर में निकलते हैं तो इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह उतरनी है, अगर नहीं तो आप भी इन्हीं की तरह ही परेशान होंगे।
3: ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब?
4: अभी दिल्ली दूर है भाई साहब, इतनी नींद से सोइए।
3: अरे नहीं भाई साहब, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे तो कानपुर ही उतरना है।
4: कानपुर? कानपुर तो चार स्टेशन पीछे ही छूट चुका है, अब आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए।
3: पर कानपुर छूट कैसे सकता है, ट्रेन तो इतनी फास्ट नहीं है।
4: ट्रेन तो फास्ट नहीं है, पर आपकी नींद तो बहुत फास्ट है जनाब।
3: वाह साहब, आप मजाक करते हैं, यह तो आपसे हुआ नहीं कि मुझे कानपुर में ही जगह दें और अभी हंस रहे हैं।
4: हंसू नहीं तो क्या करूं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ही था कि आपको कानपुर में उतरना है तो कानपुर पर उतार दूं।
3: छोड़िए साहब, आप जैसों के मैं मुंह नहीं लगता।
4: खबरदार,
3: तमीज ही नहीं है।
4: खबरदार, जो तमीज की बात कही, यदि खुद तमीज नहीं है तो दूसरे को क्या तमीज सिखाएगा?
3: देखो मैं तुमसे मुंह नहीं लगता, चुप हो जाओ वरना मैं सबक सिखा दूंगा।
4: तुम्हारी क्या मजाक, तुम मुझे सबक सिखाओगे? तुम आया था झापड़
3: तो मारोगे।
5: आप लोग आपस में झगड़ते ही रहेंगे या आप भी उतरेंगे? और आगे जाने का इरादा है क्या?
3: हाँ साहब, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो दूसरों की परेशानी में मजाक उड़ाते हैं।
4: फिर तुम जवान संभाल कर बातें करो, नहीं तो ट्रेन से फेंक दूंगा।
5: छोड़िए साहब, आप ही चुप हो जाइए, इन्हें दूसरों से उलझने के पहले अपनी गलती खुद ही मान लेनी।
3: वाह साहब, आप भी खूब बोलते हैं, मेरी क्या गलती है, जरा सी आंख ही तो लग गई।
2: जी हाँ, देख लिया आपने कैसे कैसे लोग होते हैं, गलती खुद करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। बेचारे की हालत तो देख ही ली आपने, सोने के चक्कर में कानपुर से चार स्टेशन आगे निकल गई है बेचारे। साथ के यात्रियों से तो झगड़ा हुआ ही, अब स्टेशन पर भी टिकट के अधिक पैसे लगेंगे इन्हें, और वापस तो टिकट कटाकर आएंगे ही। सोने वालों की कहानी भी बड़ी निराली होती है भाई साहब, ट्रेन में सोना या सभा या सिनेमा भवनों में झपकी ले लेना तो अक्सर होता रहता है, पर दफ्तर में सोने की बात आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। तो लीजिए जनाब, दफ्तर के ये बड़े बाबू हैं, जरा आप इनसे मिलिए।
6: बड़ा बाबू नमस्कार। मैंने कहा बड़ा बाबू नमस्कार, तबीयत तो आपकी ठीक है ना?
5: क्या
6: तबीयत तो आपकी ठीक है ना बड़ा बाबू?
5: आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप सेल ले लीजिए।
6: बड़ा बाबू, मैं कॉन्ट्रैक्टर चंद्र प्रकाश हूँ, मेरे बिल का क्या हुआ?
5: आपका बिल मैंने बड़ा साहब को भेज दिया।
6: पर मेरा बिल बड़ा साहब के पास क्यों भेज दिया? वहाँ से तो पास होकर परसों ही आ गया था, आज तो चेक देने की बात है ना?
5: हाँ, बड़ा साहब ही देंगे, मेरे पास चेक कहाँ है भाई?
6: कमाल का दफ्तर है, दिन में भी लोग खर्राटे मारते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं बड़ा साहब से ही शिकायत करता हूँ, बाहर है दफ्तर।
7: क्या कहा बड़ा बाबू ने, चेक मेरे पास है? नहीं तो, मेरे पास तो कोई कागज वागज नहीं है, कल ही मैंने आपका चेक साइन करके बड़ा बाबू के पास भिजवा दिया था।

0: पर सर वे तो कह रहे हैं आप ही के पास चेक है।
1: क्या कहा? मैंने कहा ना आपसे मेरे पास नहीं है।
0: पर सर वे तो सो रहे हैं दफ्तर में।
1: व्हाट? क्या कहा? दफ्तर में आज भी सो रहे हैं? वे अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। चलिए चलिए मैं खुद देखता हूँ। आइए। बड़े बाबू, चंद्र प्रकाश जी का चेक इनको दे दीजिए।
2: हाँ तो दिया साहब, आपसे कि यहाँ कोई चेक वेक नहीं है।
1: आप तो होश में हैं बड़ा बाबू, मैंने कल ही चेक साइन करके आपके पास भेज दिया था।
2: सर, आप?
1: हाँ हाँ बड़ा बाबू, मैं। आप अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। आज से आप घर जाकर चैन से सोइए। मैं अभी आपको सस्पेंड करता हूँ।
2: सॉरी सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर, फिर आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
1: नो नो, आई विल डिसमिस यू। आप हमेशा यही कहते हैं लेकिन दफ्तर में सोने से बाज नहीं आते। दिस इज वेरी बैड बड़ा बाबू।
2: सर मैं सोया नहीं था सर।
1: व्हाट? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ।
2: नहीं सर, वो तो जरा सी आंख लग गई।
3: ये थे दफ्तर के बड़ा बाबू। आखिर ये बेचारे करे भी तो क्या। छोड़िए साहब, हमें क्या मतलब उनसे। ये हेडेक तो उनके बॉस का है। फिर ये तो कुछ भी बात नहीं। अब जो नमूना आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ ये भी कमाल ही है कमाल। अगर इंसान जाग रहा हो तो आंखें लग भी सकती हैं, पर सोए हुए की आंखें खुली रहे और वो चलता भी रहे तो बात कुछ बनती नहीं। पर आप खुद ही देख लीजिए, ये सज्जन अपने ही घर में कैसे फंस गए हैं।
4: जी सुनते हैं? ओहो, सुनिए ना। अरे अभी अभी तो सोए थे, कहाँ चले गए? ओह, बाथरूम की बत्ती चल रही है। आप बाथरूम में कब से बैठे हैं जी? अरे रे, वो देखिए दरवाजा खुला है। हाँ, अरे अरे महावीर महावीर, लगता है चोर भागा जा रहा है। देखो चोर चोर, पकड़ो पकड़ो।
5: जय बजरंग बली के, जय बजरंगी बली के। कहाँ मालकिन, किधर चोर है? अरे आप चुप रही मालकिन, चुप रही। अभी उस बदमाश को हम पकड़ के लाते हैं।
4: पकड़ो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। अरे चोर पकड़ो,
5: पकड़ लिया। अब क्या बताओ बच्चों, मेरे ही घर में चोरी करने के लिए सुझा था, तुझे मालूम नहीं? मेरा नाम बजरंगबली है, बजरंगबली है, बजरंगबली। तेरी गर्दन तोड़ दूँ? हाँ
6: छोड़ दो।
5: अरे गर्दन छोड़ दूँ
6: भाई?
5: अरे तो तुझे प्यार करूँ? तू है कौन? कौन है तू? और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तो क्या तू मेरा मालिक है क्या?
4: अरे अरे सुनते हैं जी। ओहो सुनिए तो, बाथरूम से निकले तो बाहर, देखिए चोरी हो रही है घर में। आप सोए हुए हैं, हाँ। क्या कर रहे हैं? कब तक क्या कीजिएगा? अजी उठिए उठिए उठिए, महावीर पकड़ो पकड़ो।
5: ये लीजिए मालकिन।
4: हाँ बड़ा आया है चोरी करने के लिए।
5: पकड़ा गया। मालकिन कहता क्या था? हमारी सुनी ना, कहता था मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ। लगता है कि तू मेरा मालिक है क्या?
6: अरे चोर नहीं हूँ, अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ।
4: बड़ा आया है गाली देने वाला, बड़ा गाली देने वाला। ला महावीर, जब झाड़ू दे तो
6: मालिक हूँ। अरे चोर नहीं हूँ
5: मालकिन, मैं बत्ती जला के देखती हूँ।
4: जला जला जी, ये तो आप ही हैं।
5: मालिक है,
4: आप तो हमारे मालिक हैं जी। क्या हुआ महावीर, तुझे अपने मालिक को मारते
5: हुए?
4: तेरा हाथ नहीं गल गया रे महावीर? हे भगवान, तू अभी निकल जा मेरे घर से, अभी चला जा।
5: मालकिन मालकिन, आप ही ने तो कहा था कि घर में चोर आया है, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन।
4: खून निकल रहा है,
6: चोट आई। उस पर क्यों बिगड़ती हो? हाँ रमा, गलती तो मेरी ही थी।
4: चलिए
6: नींद में ही बाहर निकल गया
5: बजरंग बली।
4: ये लीजिए पानी पी लीजिए।
5: पानी पी लीजिए मालिक, बजरंग बली।

0: भगवान, आप ही धन्य हैं। मैं तो सोच रही थी कि बाथरूम में आपकी आँख
1: जी हाँ, तो देखा आपने एक कैसे कैसे नमूने हैं मेरे पास, सोने वालों की कमी नहीं है।
2: जरा सी आंख लग गई, गिरिंद्र प्रसाद की लिखी और निर्देशित झलकी अभी आप सुन रहे थे। ये झलकी हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

ये था फिल्म अशोका का गाना, आवाजी अभिजीत, चित्रा के एस और साथियों की। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीतकार थे अनु मलिक।

फिल्म रिफ्यूजी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर सोनू निगम और अलका याग्निक के, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें थी, फिल्म का नाम था रिफ्यूजी।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सी.वाई. चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक, पत्रकार,

0: प्रताप सुमन जी,
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद सईद, फरीब साबरी और उनके हमनवा, फिल्म का नाम है हिना, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।

0: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू

0: उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और

0: भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
1: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए। शाहरुख अली ने

0: एक गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। गायक स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत SD बर्मन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी हैं और संगीतकार रवि हैं।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए, फिल्म का नाम है बरखा। राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त के संगीत।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाने सुनिए। स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हजरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में डाला है खेमचंद प्रकाश ने।

इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी

0: My name is Lakhan. Sajno ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक अली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

फिर आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था, लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

पूजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

0: कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।
1: फर्राटे वाला फैन, खर्राटे मारे मैन, उड़ जा रे उड़ जा।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

कहीं दिल जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

ये राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नख़मे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की परी।

तप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

हम बोल रहे हैं विद्यावर्धक नागपुर केंद्र से FM बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग

0: करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं विविध भारती के नागपुर केंद्र से एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि की 11:05 हुए। प्रस्तुत कार्यक्रम बेला के फूल। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए हसरत जयपुरी के लिखे गीत से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है गणेश ने। फिल्म का नाम चालाक।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में भी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत शंकर जयकिशन की धुन पर। फिल्म का नाम था जीत। श्रोताओं आप सुन रहे कार्यक्रम बेला के फूल विविध भारती के नागपुर केंद्र से एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना है इंसान फिल्म का गीत। आइए मैं आपको सुनवाते हैं अगला नगमा आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम इनकार।

बिल्कुल करिकम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं ब्लफ मास्टर फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण की रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ब्लब मास्टर फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही आज का बेलखबुल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती के नागपुर केंद्र से एफएम बैंड 16.6 MHz पर। आइए अब सुनते हैं मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों में नागपुर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस जो कि औसत तापमान जो कि सामान्य था। न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस जो कि औसत तापमान से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम था।

अनुमान है कि आने वाले 24 घंटों में नागपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में आसमान में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, साथ ही कल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। अभी आप सुन रहे थे मौसम का हाल, FM बैंड चमर पूर्णांक 6 MHz पर आकाशवाणी नागपुर से हे विविध भारती केंद्र आहे। यावेळी रात्रीचे 11:30 झालेले आहेत। आमच्या केंद्राचे आजचे कार्यक्रम संपलेत, पुन्हा आपली भेट होईल उद्या सकाळी 5:55। शुभरात्री, जय हिंद।